0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
0: ये कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
1: तो भुगतो।

अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर एमजी गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका।

0: Roll camera and action!
1: आदि वो लोग कुछ शूट कर रहे हैं।
2: हमारे बिना शूटिंग ऐसे कर रहे हैं?
3: ये तो अपना गाना। या कम ऑन, बॉल की शूटिंग हमारे बगैर।

सर अर्श शहनाइयां बज रही है, पए मुस्तफा महफिले सज रही है, मसरत के शह को पयाम आ रहे हैं, खुदा की तरफ से सलाम आ रहे हैं, सजा बाग जन्नत मोहम्मद की खातिर, जली शमे रहमत मोहम्मद की खातिर, हर एक हूर जन्नत की दुल्हन बनी है, सरे राह मशाल जलाए खड़ी है, फरिश्तों की टोली भी साथ आ रही है, हबीबे खुदा की बारात आ रही है, सरे अर्श तशरीफ बुलाते हैं देखो, हटो ए फरिश्तों वो आते हैं देखो।

जिसने देखी एक झलक रुकी वो शहदा हो गया, एक नजर पड़ते ही हर बीमार अच्छा हो गया। कैसा ही तूफान हो लेकिन पार बेड़ा हो गया, या मोहम्मद उसका हर गम से कनारा हो गया कि जिसके सर पर आ

करबला में लाज रख ली आपने ईमान की, बख्शिशे उम्मत पे जब शर्ते शहादत लग गई। मरहबा ए फातिमा के लाल हुसैन इब्ने अली, दे दिया सर।

अपना वाली है वही जो साहिबे मेराज है, जिसकी नाले ने मुबारक अर्श की सरताज है। गम के हाथों मेरे मौला जिंदगी का राज है, एक नजर की हस्ती इबरत फकत मोहताज है, कि तुमने जिस कतरे को भी

0: तवाफ करो, काबे का तवाफ करो। चलो चलो हज का महीना आ गया,
1: चलो चलो हज का महीना आ गया।

0: Your life, your music, your 89.1 FM, NTN Radio.
1: कहाँ जा रहे हो? महफिल की रौनक खत्म हो जाएगी तुम्हारे चले जाने से.
2: गरीब अमीरों की महफिल की रौनक नहीं, हमेशा तमाशा बना है.
1: ठहरो नहीं, लौट आओ हमारे मेहमान बनकर. हम बुला रहे हैं, आओ ना. थैंक्स. हम आपसे कुछ मांगे तो इनकार तो नहीं करोगे?
2: जी नहीं.
1: फ्रेंड्स, आज की शाम और खुशगवार हो जाए इसलिए हमने अनिल साहब से एक वादा लिया है कि वो हम सबको एक गाना सुनाएंगे.
2: सर, मुझे तो एक ही गीत आता है और वो गम का गीत इस खुशी की महफिल में कैसे गा सकता हूँ?
3: वो खुशी क्या है अनिल जिसमें गम शामिल ना हो? ना गम. सिंह.